0: रक्षा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट डरे तत्काला।
1: सगल निद
0: कृपा दृष्टन जाय ने हरि हो, ताके ताप तनक में हरि हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छा छुए सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा,
1: करे प्रतपा।

जिसनो कृपा करे सो त्यावै नित हर जप जप जप हर सुख पावै गुर प्रसादी हर रस आवै जप हर हर पार लंघाई जीउ रहाउ निरभउ निरंकार सतनाम जग मै श्रेष्ठ उत्तम काम

0: मेरे जन्मा दे पाप सारे धो गए,
1: तेरे दाते अदार जद हो गए, मेरे जन्मा दे पाप सारे धो गए।
0: कागजे ते मांग दिल साफ है जी उत्ते

पंचभूत ताज तंगन रघुल दादाजी को कर ले गोपाल कृपा निधान दीन दयाला सखाचारी पूर्ण परमेश्वर नील खदे ना हो भी भंगन मन दान अरब धरी हरियाल।

तेरा पंगा ना। अभी तो मैं तो ठंडा यार मन की मिट गई ना जा। अरे यार काट लिए प्रभु अपने हमें तो हाल जो ठंगा ना। एको यार बैगड़ा का जो जो जो जो

जब जीवन हमने जुड़ा हुआ प्रवासी है सुनगा तड़ितरी से नरसिंह नारायण दाड़ा अग्री कर्तम रामचंद्र जी रूप नार्य क्या

0: कोई काल। दवाणी को बाला जंग की मंगोर बाला वचन भी वचन हुई है करमल जगले जाल का तन तन की ये रीत निराली पर ब्रह्म कर देखे नाली जय जय आराधन हर हर क्यों जिम्रत की जय अलका जीवा तेरे राजा मंजर गुण दल तेरा है प्यारे रंग रते तेरे दास व्यापारी तेरे रंग रते तू जेहे बिरले के भालका जिनकी धूड़ मांगे मन मेरा जिन बिचरा नहीं कहूँ घेरा जिनके जंग परम पद भाई तेरा संगी है नलका जाए मीरा बैरा सोई तू कोई काम करो अहंकार से जाए ते जान का उपदेश निर्मल का तुझ पर नहीं कोई मेरा गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा हम बले हरी सतगुर पूरे जिन खंडिया भरम नलका
1: चुप
0: सहज प्रभु बिछड़ा नहीं हर पर हर हर तो त्याई नानक पसंद तेरा रंग राते तू समर्थ बडालका मारू मल्ला पांचवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: प्रसाद चरण कमल हृदय नित तारी गुरपुरा किन किन नमस्कारी।
0: अच्छा।

जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुरु नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। गुरपुरै हर नाम दृढ़ाया बिन नावै जीवन बिरथा।

जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म समाथा मोकौ की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा।

हमंदले कौ गुरी अंचल दीजै जन नानक चलह मिलंथा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता प्रश्न पवन निराकार मूर्त अजनी सतगुरु प्रसाद जप आज सत जुगा सत

एक मूर्त अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेला खेल खेलन अंत को फिर एक देव पे न जानही। जे वेद और कते रूप रंग न जात पात सो जान नहीं कह जे बहुत आत्मात न जात जाकर जन मरण विहीन चक्र बकर फिर चत्र चक।

परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व स्वर्चियो सुयम पवगण भंजनहार काल हीन कला संजोत काल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत भूत अलख अभे संग राग नरंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम महाप्रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंग हीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वांता सर्व ते अनपेक सर्वशास्त्र न जानहि जेहि रूप रंग वर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाक्त नेत कोट

सर्वंग हंता सर्वंग हंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग कर्म सर्वंग तर्म सर्वंग योगता सर्वं मुक्ता रसावल शंतु प्रसाद। नमो नरकनाशे देवं प्रकाशे अनंगंग स्वरूपे अपंगंग विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न तत्य न मतय न जातय न पातय नृसाकं श्रीकं मितो अमीकं सदैवं प्रवाह जय हे अजाह है।

कि सर्वलोक वन है हमें सुलर वन है तमाम लुतमीन है समस्त लीन है परम परमेश समस्त अधीश है अदे सुलेख है हमें सुलेख है जमीन उल जमा है अमी कुल माँ है क्रीम उल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमित तो सुभाष है कि आजब स्वरूप है कि अमित तो विभूत है कि अमित तो प्रसा है कि आत्म प्रवाह है कि अचलंग अनंग है कि अमित तो अपंग है मध पार शांत है प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर वर गंज हर नर पर पंजन गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छेद अंग या सुने अपंग उपमा पार गत में तो उदार जल थल अमंड दस विस्व पण जल थल महंत दस विस्व अंत अनुभव अनास

मुरमुरे अकाल कर कर प्रणाम जित चरना मन छिज गात अजना बात झंज गात नरंज बात अन टुट भंडारण ठट अपार अडीठ धर्मत ठीठ कर्म अण ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शंतवै प्रसाद करुणा लिये हैं अर काले हैं खलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकार न है सर्व उबारन है त्रत के तन है जाके कर्ण है मनमानिय है जाग जानिए सर्वम पर है सर्वंकर है।

अमृत है, धरणी तृत है, अमतेश्वर है, ब्रह्मेश्वर है, अकृता अकृत है, अमृता अमृत है, अजवा कृत है, अमृता अमृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वंतर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है, पंजन है, अर्गंजन है, रेप तापन है, नृप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्मवस है, जस के जस है, पुजंग प्रयात शांत

परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जोग जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आश्वासे नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे अनंगी नाम मित्र भंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अच्छरी शांत

माते मतंग जरेडर संग अनुपो तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे पारी पुजान के

देव फनिंदन ने साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे।

नमस्कार तुसही को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी सिवकन को सबगुन सुख दियो सत्रन को पलमो बत कियो काट काट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पिशान चीटी ते कुंचरे सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

जब उद करख करा करता रा प्रजा तरत तब देह अपारा जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तहारा आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम

कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आजुगा स्वरूप स्वयंपव।

कृपा दृष्ट, कृपा दृष्ट तन जाहिने हरे हो ताके ताप तन कमहि हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्व सके न कोई।

आखे तां वेखे सब तू है। जिन जग तू पाया कहे नानक तू सदा गम है, तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी। सचा मन वसाया जी जन सब तू दो पाए, एक वेख परसनु आया, लभ लो अहंकार चूका सतगुरु।

कल कोहोर समुद्र में बूडत थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार जह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो।

बिन गुर मूड पै है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकथा।

जाए। जो तद लिखिया लेख सोई सब कमाए, सब कछ दिसदै बस दूजी नाहे जाए। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮੰਨਤ ਜਾਏ।

विखे परवारों की सुख शांति सतगुर सच्चे पातशाह सतगुर सच्चे पातशाह जी की रहमत बख्शिश जी का जिन्हें अपनी रहमत बख्शिश करके सारी सेवा इन्होंने परिवारों पासों लई ही दूसरे अखंड पाठ साहिब की सेवा धारीवाल परिवार वालों सतगुर सच्चे पातशाह जी

नसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कज बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अंधिन जागै प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै

सिमरन बिन सह दूजा। प्रभ कै सिमरन तीरथ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, प्रभ कै सिमरन होय सो भला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला।

सिमरन सह समानी प्रभ कह सिमरन ने चलासन प्रभ कह सिमरन कमल बिगासन प्रभ कह सिमरन अन झुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत ना पार सिमरै से जन

हरी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन क्यों सगला कारा सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसा बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक।

प्रभ सात अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत ना पहाई मन ओहा नाम तेरा संग सहाई जय मां भयान दूजम दलै ते केवल नाम संग तेरा चलै जय मुश्किल होवै।

निभावै। कहाँ बुजारत बुजै डोरा, निस्कैयै तो समझै पोरा। का बिसन पद गावै, गुम जतन करै तो भी सुरपंग। कह पिंगुल पर्वत पर पवन नहीं हो तो आ उस गवन। करतार करना मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै।

सो प्रकृत गुमान अस्थिर भगत सात की शरण नानक जब जब जीवै हर के चरण। मिथ्या शरण पर निंदा सुनै मिथ्यास्पद रब को हिरै मिथ्या नेत पेकत प्रत्यय रूपाद मिथ्या रसना भोजन स्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं प्रोपकारा मिथ्या बासलेत विकारा बिन बुझ।

जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सिक्त रह संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन्जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप करत निबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझ।

अंत अनंतरया समाय सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि श्लोक काम करो दरलो मोह बिनज्जायमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छति।

सगल छेद्र ठाके मन सरणी पर ठाकु प्रभ ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊंचे जे प्रसाद पाए दुलभ दे नानक ताकि भगत करे जे प्रसाद आपू कन पैरी जय मन ते सिमरत को आलस की जय।

बणत बनाई उठत बैठत सत्य सहत आई ते सहत आए जो एक लखै इया उआ नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुनबो दान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान।

जे प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभ को मूल ना मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मोड़ तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कारज पूरे तिस जान मन सदा जूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सुनाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते वे प्रकाश प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए

कैसन सदा सुख पावे, साध संग बस्त गोचर लै साधु कैसन अजर सह, साध कैसन बसै थान ऊंचै साधु कैसन मैल पहुंचै, साध कैसन दृढ़ सतरम साध कैसन केवल पाव ब्रह्म, साध कैसन पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान, साध कैसन सब कुल उदारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कैसन सोतन पावै जिस तन ते सब को वरसावै, साध संग तरम राय करे सेवा साध कै संग सोभा सुर देवा, साधु कैसन पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन, साध कैसन सर्व थान गम नानक साध कैसन सफल जन्म, साध कैसन नेक अचकाल दर्शन पेट तोत नियाल, साध कैसन कलो कथर है साध कैसन नर पर हरै, साध कैसन गिया हुआ सोयला साध संग बिछड़न मेला, जो इच्छा सोई पल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावे पार ब्रह्म, साध रिद वसै नानक उदरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनार नाओ साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग ना मनते बिसरै साध संग सरपण निस्तरै, साध कै संग लगै ब्रह्म मीठा साधु कै संग कट कट डीटा, साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी, साध कै संग मिटै सब रोग नानक साध पेटै संजोग, साध की महिमा भी न जाने जेता सुने तेता बख्याने, साध की उपमा ते गुण दूर साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा मूझते मूची, साध की शोभा साध बनाई नानक साध प्रभेद ना पाई, श्लोक मन साचा।

अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्प को शोक, ब्रह्म ज्ञानी कह दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तिरज एक ज्यो बसुदा को खोदय को चंदन।

ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सह निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी संगीता, ब्रह्म ज्ञानी कह अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र, ब्रह्म ज्ञानी जिस करह प्रभाप, ब्रह्म ज्ञानी का बर प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दृश बड़ पागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजय महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाए, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माए।

और तारै जो अंतर नाम श्रम मैं पेख भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानक अपरस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाई रसना परस मन मैं प्रीत निरंजन द्रस पारत्रिय रूपना पेख नेत्र सात की टैल सन संगेत करण ना सुने काऊ की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिकिया पर रह मन की भासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रह नानक कोट मदे को ऐसा परस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए पिन करम करत वह ने क्रम तिस बैसनो का निर्मल धर्म काऊ फल की इच्छा नहीं बाछै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब पर्वत कृपाल आप दृढ़ अवरै नाम जपावै नानक वैष्णो परमगत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म।

नानक ऐसा भगोती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बोधै राम नाम आत्म मैं सोधै राम नाम सारस पीवै। उस पंडित के उपदेश जग जीवै।

आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आप्य आप सकल में आप अनेक जुगत ताप थाप अवनाशी नायक खंड तारण तार रहो ब्रह्मंड अलक अपेव पूरक प्रताप आप जपाय ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सकल संसार उदरे तिन मंत प्रभ के सेवक सकल उदारण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुरु का सबज पै निहाल उनकी सेवा सोए लागे जिसनु कृपा करे बड़ पागे नाम जपत पाव विश्राम नानक तिन पुरकोत्तम करमान जो किच करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाय वैसो होए किरणहार पछाने सोए प्रभ का किया जन मिट लगाना जैसा सत सदिष्टाना जिस ते उपजे तिस्माय समाए वे सुख निधान उन्हों बने।

भोजन सदा रोग जो मंदर को था मैं थमन देव कुर का शब्द मन स्थमन जो पाखाण नाव चण तरह प्राणी गुर चरण लगत निस्तरह जो अंधकार दीपक प्रगास गुरदर्शन देख मनोय विगास जो माओ ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रकटावे तिन संतन की बात चो तूर नानक कीरन उच्चा पूर मन मूरख काहे बिलाइए प्रभु लिखे का लिखिया पाइए दुख शोक पर्व देवन हार अवर त्याग तू तिसे चितार जो किच करे सोई सुकमान पूला काहे फिर जान कमन बस्त आए तेरा संग लपट रेहो रस लोभे पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पच्चे ती घर जाहे जिस कर को लैण तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हिरदे मह तोल लाद के संत है संग चाल अवर त्याग विख्या जंजाल तन तन कह सब कोए मुकूजल हर दर गह सोए हे वापार विला वापार नानक ता कह सद बलिहार चरण साध के तोए तोए पियो अरप साध को अपना जियो साध की दूर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान साध सेवा उड़ पागी पाइए साध संगर कीर्तन गाइए अनेक बिगनते साधु राख है हर गुण गाये अमृत रचाख है ओट गही संत दराया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवा लनहार तूके को देवत दार सर्व निदान जाके दृष्टि माए प्रभु लिखे का लहना पाए सब की जिसका करना जोग तिस बिंदु सर होआ ना होग जब जन सदा सदा दिन रैणी सब ते ऊच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए ते लोए जाके हृदय कोए सच करणी सचता की रहत सच हृदय सतमुख हैत साची दृढ़ साचाकार सच वर्त साचा पसार पार ब्रह्म जी सच कर जाता नानक सोजन।

जिसो वै सो प्रसन्न अष्टपदे अवनाशी परमन मै राख मानु की तू प्रीत्याग तिस्ते प्रह नाय किच कोय सर्व निरंतरे को सोय आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहिर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणे पाओ नानक कह मन एन राओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण प्रण जा का नेत्र फोर तिसका मंत्र जान होर आनंद रूप मंगल सत जाके सर्व थोक सुनिय करता के राज मह राज जोग मह जोगी तप मह तपी सर गिरस्त मह भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस प्रका किन अंत ना पाया जाकी लीला कीमित नाहे सगल दे उहारे अवगाह पिता का जन्म के जान पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जिंदास नाम त्यावै सेहे ते गुण मै जाको परमाए जन्म मरै।

विक्रय एक रंग, नाना वितकिनो विस्तार, प्रभु बनासी एक अंकार, नाना चलत किरे खिन माहे, पूरे पूर्ण सब ठाए, नाना विद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीव नानक हरनाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे स्मृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगलाकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन सरवण, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पूरक सत केवल प्रदान, करतूत सत सजा की वाणी, सतपुरक समाय समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत्त, सतकर्णी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब पली, सतनाम प्रकाश उदाई, विश्वास सतनान गुरते पाई, सत वचन साधु उपदेश, सत्य जंजा के हृदय प्रवेश, सत निरत बुझे जे कोए, नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसके सिरठ सो करण हार, अवरना बूझ करत विचार, करते की मित जान किया, नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बुझा तिस आया स्वाद, प्रभु कै रंगराच जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, वेदाते दुखा टनहार, जा कै संग तरह संसार, जन का सेवक सुवर्ण पागी, जन कै संगे गले बुलागी,

मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा।

संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म, संत जना सुनह सुबचन, सर्वव्यापी राम संग्रचन, जिन जाता तिसकी एह रहत, सत वचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख समोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत, तिस पहावै ता करे विस्तार, तिस पहावै ता एक अंकार, अनेक कला लखी नह जाए, जिस पहावै तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप आ भरपूर, अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जनिया बुझाए,

संग अगन सागर तरहो। हर तन के पर लेहो भंडार, नानक गुरपुरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद साध संग।